तुम भी कंगे कन्ना तमिका कसुम भी कंगे अन्नंगोड़े वे कसुम भी कंगे।